संसार विकार संसिम तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसहे जगाए पियाए रास्य कथ कथा तन जानी।

सज के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के।

0: अंतर पूजा करे पड़े कते पास संयम दुर्गा पहाई छोटी ले पाखंडा धाम लय जाए तरंदा मुहला पहला
1: मानस खाने करे निवाज श्री विगायन तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे ना दे उना पे आवे साध कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोले करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आ भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र

दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए। दीवाने को कर में कहा मा तुम मेल दर न लिखा पीड़ छुटे।